0: हैं तो लोग उसके भी कार्रवाई करने के लिए एकदम पूरा फाइन मार रहे हैं। 15,000-20,000 हम लोग की औकात है 15,000-20,000-25,000 फाइन मारने के लिए।
1: 3 दिन के लिए ऑटो रिक्शा स्ट्राइक बंद है और मराठी बोलने के उपलक्ष्य में बंद रहेगा 2-3 दिन। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 80 साल 60 साल पुराने लोग को मराठी बोलने के लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसलिए हम लोग को न्याय चाहिए थोड़ा बहुत।
2: Well, with that, it's time we slip into a short break. Much more lined up on the other side. Don't you go anywhere.
3: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे
4: बोझे पेंट्स रंग। डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
5: कुछ इससे भी अनोखा।
4: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
6: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
7: रियली
6: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
7: How?
6: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
7: It's the Mahi way.
8: Hindustan mile, Hindustan se.
9: Desh ka tire, JK tire.

0: With that, it's time we slip into a short break. My colleague Divya Wadhwa joins you with The Breakfast Show on the other side. Don't you go anywhere.
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: jail authority to provide such type of relief to the prisoner who has been convicted in the various cases. So as of now, what we have learned earlier, he has been sent to Uttar Pradesh, but now the permission has been given him to stay in Dera Sacha Sauda headquarter in Sirsa. So he is going there, he will be staying there, he will be holding some programs there. That will be totally dependent on what type of condition they have given and what type of condition they have permitted as per the jail manual. So we have to wait and watch how the Haryana government is going to react on this another relief, which
1: very controversial, of course. Many questions being raised here, concerns being flagged. Thank you so much, Gurpreet. We will keep coming back to you for more on this. Now, switching tracks to more breaking news coming in, and this is coming out of Maharashtra. We have the Supreme Court Judge, Justice Prasanna, who has flagged the dismissal situation of the education system and the budget that seems to only be shrinking in Maharashtra, saying that Marathi schools are only closing down and they could have been saved with a fraction of the money that's spent on the Nasik Kumbh. Even 0.1% of the amount, that is the entire expenditure, could have saved 100 to about 125 Marathi schools from closing down. That is what the judge has said at the inauguration ceremony of smart classes at a high school in Maharashtra. So here we have also Congress, reacting to the same, in fact, saying regarding this Kumbh Mela in Nasik, repeatedly questioning the need to spend 35,000 crore rupees. The state is facing numerous issues, particularly in the sector of education. Many schools that are shutting down, schools that were existing, there are no teachers there. In terms of even the building and the infrastructure, questions are being raised. And across the country, 92,000 schools remain closed, and Maharashtra reflects this grim reality. Whenever we questioned the necessity of such spending, we were branded as anti-Hindu. We never opposed the Kumbh Mela, but our point was very simple. Why spend this kind of money on it in the first place?
2: आपलं शासन तर म्हणतंय की आम्ही खूप सकाळी निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी देऊ, कुंभमेळ्यासाठी 32,000, उपमुख्यमंत्री म्हणाले 34,000 कोटी देऊ. नंतर कुठेतरी बातमी वाचली की एका कॉरिडॉरसाठी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करू. एवढे हजार कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं, त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही. पण जर ह्या हजारो कोटीच्या रकमेत जर साधन तरतूद करत असेल, तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले, तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा, मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या, त्या बंद पडल्या.
3: राज्य मे बहुत सारे समस्या है, प्रॉब्लेम है, शिक्षा की समस्या है. बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचा भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है. हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चे के इतने पैसे की, इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है, तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था. हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया, वो कुंभ मेला करो आप, पर 35,000 करोड़ रूपये क्यों खर्चा करते हो, ये हमारा कहना था. सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, जज ने, श्री प्रसन्ना जी वराड़े जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है, और 3,000 रुपए खर्चा कर शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है.
4: सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का, उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती. उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूल है उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर, तो वो भी बच जाती. तो इतने बड़े न्यायाधीश ने कहा, अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है.
1: Sujata, my colleague joining us in order to get us more on this. Sujata, the previous Kumbh Mela in Nasik reportedly costed 3,000 to 3,500 crore rupees. Why has that amount gone up by almost tenfold when it comes to 2020?

0: क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर JK टायर।

0: क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा आर्थर मसाला।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: Allahabad High Court rejects UP students' petition challenging restrictions on wearing the hijab.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: towards the Chief Minister's residence, demanding changes in the exam pattern since implementation.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
1: अरे मेरे राजा.

0: The event, Justice Prasanna B. Varale pointed out that the government is planning to spend around 32 to 34,000 crore rupees on this Kumbh Mela, while highlighting the closure of Marathi medium schools in Maharashtra. The remarks have now been welcomed by the opposition. Opposition leaders said that Maharashtra continues to face so many serious problems when it comes to education, including a lack of teachers, school buildings, toilets, drinking water and proper access roads. Meanwhile, the BJP is hit back at the opposition and said the Congress leaders are anti-Sanatanis and they are not liking the Kumbh in Nashik.
1: एकीकडे मी असं पाहिलं की आपलं शासन तर म्हणतंय की आम्ही खूप सकाळी निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी देऊ. कुंभमेळ्यासाठी 32,000, उपमुख्यमंत्री म्हणाले, मुख्यमंत्री म्हणाले 34,000 कोटी देऊ. नंतर कुठेतरी बातमी वाचली की एका कॉरिडॉरसाठी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करू. एवढे 1,000 कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही. पण जर ह्या 1,000 कोटीच्या रकमेत जर साधन तरतूद करत असेल तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा, मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या त्या बंद पडल्या.
2: राज्य मे बहुत सारे समस्या आहे, प्रॉब्लेम आहे, शिक्षा की समस्या आहे, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं. स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचा भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है. हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चा के इतने पैसे की इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है, तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था. हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया. वो कुंभ मेला करो आप, पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करते हो, ये हमारा कहना था. सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, जज ने, श्री प्रसन्ना जी वराड़े जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए खर्चा कर शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है.
3: सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का, उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती. उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूल है उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर, तो वो भी बच जाती. तो इतने बड़े न्यायाधीश ने अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है.
4: महाराष्ट्र की भूमि पर देवाभव के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे हम खर्च कर सकें. पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे. वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं. सारे कांग्रेस नेता कान खोल करके ध्यान से सुने, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर महाकुंभ होगा और यदि इसे कोई विरोध करता है तो आने वाले चुनाव में जनेऊ पहनने का कांग्रेस का नाटक या हिंदू मंदिरों में जाने की नौटंकी सनातन हिंदू भाई नहीं सहन करेगा.
0: All right, so Supreme Court judge there questions the Nashik Kumbh spending. 34,000 crores is going to be spent on the Kumbh Mela. Well, shifting focus now to an incident in Karnataka, a row has erupted over VIP behavior at a temple in Mandya in Karnataka. This is after the daughter of a BJP MLA visited this temple. Now, you can see that video on your screens there. This is from 12th of August, which shows the BJP MLA Suresh Gowda's daughter and a police officer. Now, in the CCTV video, video, the BJP MLA's daughter named Aishwarya can be seen slapping the cop who was on duty at this temple. The officer then appears to hit her back. The clash allegedly followed a dispute over entering the temple sanctum sanctorum. The police officer has now filed a complaint against the MLA's daughter, while the incident

0: होती है तो हम उसका विरोध करेंगे।
1: सभी धर्म या मजहब की अपनी परंपराएं होती हैं और उनके अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं और उसका पालन करने के लिए वो बहुत जिद करते हैं, बहुत आग्रह करते हैं। लेकिन जो धार्मिक परंपराएं होती हैं वो अपने मंदिर में, अपने घर में पालन किया जाना चाहिए, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं, स्कूल में, कॉलेज में या फिर पब्लिक प्लेसेस पे। कोई धर्म विशेष के लोग बोलेंगे कि हमको ये खास तरह की परंपरा का पालन करना है, वो कहीं ना कहीं जो एक सार्वजनिक व्यवस्था होती है जिसको हम पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं उसके खिलाफ जाता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है और मुझे लगता है मुस्लिम समाज के लोगों को इस फैसले का मर्म समझना चाहिए और देश की मुख्य धारा में आना चाहिए।
2: Let's now take you through the key statements of the Allahabad High Court's hijab verdict. First up, the High Court says hijab not essential to Islam. Then it says that hijab is not an essential part of Islam and faith would not be jeopardized if you don't wear a headscarf. Uniform policy must be non-discriminatory. Apart from that, it also says individual choice cannot alter the uniform and no constitutional right is violated. So these are some of the big statements coming out of the Allahabad High Court when it comes on the hijab verdict. On that note, we're slipping into a very short break. Come right back. Lots more line.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: भारतीय जनता पार्टी लोकसभा एमपी फ्रॉम भिवानी महेंद्रगढ़। धर्मवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपने भी देखा होगा सर, आपके राज्य में गुरुग्राम जिसको एक मॉडल शहर की तरह, मिलेनियम सिटी की तरह बात की जाती है, एक घंटे की बारिश सर और त्राहिमाम हो गया है गुरुग्राम में। जहां पर 8 साल पहले भी पानी भरी हुई तस्वीरें आती थी, उस जगह पर आज भी वहीं पर वैसे ही स्कूल बसें फंस रही हैं।
1: ठीक है, आप क्या मैं बोलूं कि आपकी बात का जवाब दे सकता हूं?
0: जी सर बिल्कुल,
1: मेरी आवाज आ रही है?
0: सुन पा रहे हैं सर?
1: क्या मेरी आवाज है आपके पास?
0: सुन पा रहे हैं सर, प्लीज बताइए।
1: सुनाई दे रही है क्या मेरी आवाज आपको?
0: सर बिल्कुल ठीक
1: ठाक, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको?
0: बिल्कुल आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है और जनता भी ये सुनना चाहती है कि सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है वो गुरुग्राम के लिए कर क्या रही है।
1: देखिए, हमने पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। हरियाणा एक नया प्रदेश है। आज से 50-60 साल पहले ये केवल गुरुग्राम गांव था और धीरे धीरे हम दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुरुग्राम एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर डेवलप हुआ। हमारा जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं हम नहीं बना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड की चौड़ाई हो, पानी की निकासी हो, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज बनानी हो, यूटिलिटी के लिए कोई जगह बनानी हो, हमें इस पानी को उठा के जमुना में डालने की बात हो, धीरे धीरे जो योजना बननी चाहिए थी वो योजना आज से नहीं, पिछले 50 साल के इतिहास में देखोगे तो एक गांव के लिए योजनाएं बनी थी, छोटे शहर के लिए बनी थी। आज सबसे बड़ा शहर बन चुका है, बहुत बड़ा शहर। इसलिए आपको नजर आता है जैसे ही बारिश आएगी अब जमीन पानी पीती नहीं। हमने जमीन को भी ऐसा जहरीला बना दिया कि थोड़ी बारिश का पानी भी ऊपर आ जाएगा। बची हुई जमीन में हमने सीमेंट कंक्रीट के रोड बना दिए, छत पक्की बना दी। आज की सरकार पिछले 12 साल से इसी कोशिश में है कि जो बारिश का पानी है उसको हमने जमीन में कैसे छोड़ना है। हम जब भविष्य में किसी को परमिशन देते हैं टाउनशिप के लिए मकान बनाने के लिए, तो उसको क्या तरीका अपनाना चाहिए। पुराने रोडों को आज हम ये मानने के वो 30 मीटर का, उसको हम 100 मीटर का कर देंगे, आज संभव नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन आपकी चेन्नई में है, बंबई में है, आप किसी शहर में जाके देखिए। हम अकेले सफरर नहीं है, मौसम का परिवर्तन भी ऐसा है कि कभी बारिश बहुत लंबे टाइम पर होती थी, आज तो एक घंटे में इतना पानी पड़ जाता है कि उसका निकासी नहीं हो पाती।
0: तो सर सारी गलती
1: ऐसे हालात में
0: सारी गलती मौसम की है। सरकार आप कह रहे हैं 12 सालों से सरकार 12 सालों से सरकार 12 सालों से चलिए चलिए मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12 सालों में 3 ऐसी बड़ी योजनाएं जो गुरुग्राम की नालियों को, ड्रेनेज को ठीक करने के लिए सरकार ने की हो, 3 बड़ी योजना।
1: आज के दिन बहुत बड़े पानी, जो भी ऊपर का पानी था नए गुरुग्राम का, उसको निकासी के लिए हमने उसी को पानी का नाले में डालने के लिए कंप्लीट काम चालू कर दिया। कंप्लीट
0: कब किया?
1: ठीक है कि वो जो नदी नाले पुराने नाले थे हमारे, जिनको पहले ही आज से 20 साल पहले एनक्रोच कर दिया गया, छोटे नाले बना दिए गए, उन नालों को आज के हम उसी जगह पर चौड़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही।
0: सर 12 साल में सरकार कोई सलूशन नहीं निकाल पा रही है, तो अभी आप बोलेंगे कि हमसे पहले वाली सरकार, हर साल आप इस चुनाव इसी बात पे,
1: पहले वाली में हमारी सरकार थी, मैं ये नहीं कहता
0: हम विकास करने वाले हैं, हम चीजों को बदल देंगे, ये समस्याएं जो आपको इस साल होगी अगले साल नहीं होंगी।
1: मैं ये दोष पिछली सरकार को नहीं दे रहा, पिछली सरकार भी हमारी सरकार ही थी, हम भी उसी में थे, लेकिन हमने ये योजना नहीं बनाई कि आने वाले टाइम पर इतना व्हीकल हो जाएगा, इतने रेजिडेंस बन जाएंगे, ये अंदाजा ही नहीं था किसी का।
0: तो सरकार की विफलता है, आप ये मानते हैं इस बात को?
1: जी
0: सरकार की विफलता मानते हैं आप इस बात को?
1: किस चीज को?
0: गुरुग्राम में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो सरकार की विफलता है?
1: नहीं नहीं, सरकार की विफलता नहीं है। मैं कहता हूं आज से 60 साल पहले हमें नहीं पता था कि इतनी ज्यादा आबादी गुड़गांव में आ जाएगी। उस वक्त हमें जो योजना बनानी चाहिए थी वो योजना आज से 60 साल पहले की उस सोच के हिसाब से नहीं।
0: 60 साल पहले क्यों, आजादी के टाइम में ही ऐसी योजना बना देनी चाहिए थी सोचकर? समस्या अगर अभी आ रही है, सरकार अब यही कहती रहेगी 60 साल पहले की बात करती रहेगी, तो फिर किस बात की सरकार, किस बात की आप लोगों की तैयारी है?
1: हमारा नया मास्टर प्लान है, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, गुड़गांव का हो, नए जो शहर बसाने हैं उनका मास्टर प्लान आप देखिए। इसलिए बाहर का इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएगा, आएगा 100% आएगा। पुराना गुड़गांव अगर हम देखें तो इसको सारे को तोड़ कर दोबारा नया कैसे बना देंगे?
0: तो आप ये
1: संभव है?
0: कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो फिर सरकार को आके कह देना

0: ये हम विफल है, हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं प्राइवेट
1: कोलकाता विफल है, जितना हमारे से हो सकता है उससे ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि पानी की निकासी हो, ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए सरकार जिला प्रशासन
0: तो आप बना करिए ना लोगों को, फिर नई बिल्डिंग्स को नई गाड़ियों को गुरुग्राम में आने की इजाजत क्यों दी जा रही है? मना कर दीजिए, गुड़गांव के अंदर कोई नया घर नहीं बनेगा अगर सरकार
1: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। कई बार दिल्ली में जब ऐसे हालात होते हैं तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गुड़गांव एनसीआर में बिल्कुल ब्रेक लगा देती है कि आप इन गाड़ियों को बंद कर दीजिए, ये हर आदमी को पता है। लेकिन आप क्यों
0: जी, एक तो बड़ी सादी सी बात है ना, अगर लोग टैक्स देते हैं अपनी गाड़ी कमाई से, सरकार को टैक्स देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अगर हरियाणा के नंबर एक शहर में ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा तो सरकार को किस बात का टैक्स दिया जा रहा है?
1: इसीलिए नीति आयोग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर प्लान इसीलिए बनाए हैं, नई योजना इसलिए बनाई है कि योजनाबद्ध तरीके से गांव और शहर की बसासत होगी और हम पुराने सिस्टम को ठीक करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। अगर हम केवल केवल लीपापोती करेंगे तो बात नहीं बन पा रही।
0: लीपापोती नहीं तो फिर बता दीजिए आज की कितने साल लगेंगे आपकी सरकार, तीसरी बार बीजेपी की सरकार है वहां पर, उसके बाद अभी और कितनी बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी कि गुड़गांव के लोगों को ठीक ठाक पानी, सड़कें जो हैं वो बिना ठीक ठाक
1: वचनबद्ध है 2047 तक ये देश सारा विकसित देश होगा, हरियाणा सबसे पहले विकसित होगा जिसमें गुड़गांव शामिल है।
0: 2047 तक हो जाएगा सर?
1: हाँ 2047 तक आप देखना हमारा गुड़गांव भारत क्या होगा।
0: तो 2047 तक हो जाएगा यानी कि गुड़गांव के लोगों को आराम से अभी 21 साल और बीजेपी को वोट देके आराम करना चाहिए कि 2047 तक कर ही देंगे आप?
1: और क्या मिली जो सरकार देना चाहेगा देश,
0: तो
1: देश
0: चाहता है कि सरकार, अगर आपके पास सलूशन नहीं है तो फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कह रहे हैं 21 साल का इंतजार करो 2047 में आपको सड़कें ठीक देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा सर?
1: देश तेजी से बदल रहा है। जो देश 12 साल पहले था आज वो देश नहीं है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इस 12 साल में रेल का, सड़क का, निकासी का, पानी का, बिजली का बहुत बदलाव आया।
0: बिल्कुल बदलाव आया, आप ठीक कह रहे हैं 12 साल पुराने वाला देश नहीं है, लेकिन गुरुग्राम हो गया 12 साल में, पहले भी पानी भरता आ रहा है, अभी भी पानी भरता आ रहा है।
1: मैं कहता हूं
0: जनता को 2047 तक इंतजार करो, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक सेकंड जरा आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगा।
1: गांव था ये, पहले छोटा गांव था, पंचायत थी, ये पहले गांव था। गांव से बढ़ते बढ़ते इतना तेजी से हमारा जो शहर डेवलप हुआ है, ये प्रदेश की जनता, केंद्र और प्रदेश की सरकारों की सभी का मिला जुला सहयोग की वजह से आज हम यहां तक पहुंचे।
0: हम सहयोग
1: और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है।
0: सहयोग से पहुंचे कि हमारे बच्चे पानी में फंसे रहे?
1: नहीं, कोई नहीं चाहता। हम हमारे भी बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, नाते नातियां हैं, हम भी चाहते हैं कि सुधार हो, जल्दी हो।
0: तो कब तक हो जाएगा सर? अपने पोते पोतियों को आप क्या क्या उनको वादा देंगे कि कब तक कर देंगे दादाजी ठीक सब कुछ?
1: देखिए अकेला मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूं सारा सिस्टम व्यवस्था को सुधारने के लिए पुरजोर कोशिश है कि ये व्यवस्था सुधरे।
0: सर 12 साल सर लोग हरियाणा के आपको दे चुके हैं, पता नहीं और कितने साल देने होंगे व्यवस्था को सुधारने के लिए। मैं जाने से पहले आपको एक सवाल और पूछना चाहूंगा। हरियाणा में आज गुरमीत राम रहीम है, एक आप जानते होंगे उनको, 17वीं बार उनको पैरोल पर आज फिर से छोड़ दिया गया है। हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर जो अगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात करें तो उसमें हरियाणा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा तो है नहीं। मेरे पास सारा डेटा है क्या रेप के केसेस हैं। एक रेप कॉन्विक्ट को कैसे इतनी आसानी से 450 दिन से ज्यादा जब से उन्हें सजा हुई है वो आराम से बाहर निकल जाते हैं? आपको नहीं लगता कि सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सोचना होगा? सरकार के बिना हामी भरे गुरमीत राम रहीम इतनी आसानी से तो निकल नहीं सकते,
1: क्योंकि हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम और जेल मैनुअल कोई आज का नहीं है, जेल मैनुअल जो पड़ा है उसी के मुताबिक ही ये फरलो ले लेते हैं। ये सही बात है कि आने वाले टाइम में इसमें क्या बदलाव देश चाहता है वो तो सारा देश करेगा तभी होगा, लेकिन आज के दिन क्योंकि जेल मैनुअल ये इजाजत देता है फरलो।
0: सिर्फ जेल मैनुअल इजाजत देता है जब होम मिनिस्ट्री जो सरकार की होती है वो भी उसमें हामी भरती है, तो आपकी सरकार क्यों उसको इतनी आसानी से हामी भर देती है?
1: देखो हम कानून से ऊपर तो नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी एक अलग चीज है, जुडिश कानून से ऊपर आप और हम नहीं जा सकते। कानून में ये प्रावधान है तो इसमें हम क्या कर पाएंगे?
0: कानून में प्रावधान ये भी कहता है कि कम से कम अपनी डिसेंट तो रखिए, कम से कम ये तो कहिए कि ये व्यक्ति बाहर आने लायक नहीं है।
1: आपकी बात को हमने सुन दिया, आपकी बात को भी हम ऊपर तक पहुंचाए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और पता नहीं जब तक बात पहुंचेगी, टिल द टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी टेल यू वन थिंग, And this is why where I was coming to after this story. This story, once again, like Gurugram, has only invoked a lot of anger. The BJP wants to run away from it. They don't want to, in fact, answer the questions. You heard the MP on Gurugram till 2047, on Gurmeet Ram Rahim. We will talk. We will talk to our superiors. But it's not something that has happened just today. This massive outrage is because Gurmeet Ram Rahim is out once again on a 21-day temporary release. And this is the 17th time, let me tell you again, 17th time since 2017 that this man, after being convicted as a rapist, has been given a furlough or a parole. It once again puts the spotlight on the VVIP treatment that this man gets. And for reasons, I'm not going to say not known to people. Everybody knows the political significance and how the politicians think that he can be utilized. The Sunaria prison in Rohtak is where he was released today. And then he went to his Dera headquarters in Sirsa, where he will be staying during his release period, comfortably as always. This is his third consecutive visit to Sirsa Dera. Ram Rahim is serving a 20-year sentence for raping two women disciples. His repeated parole and furlough releases have remained a subject of scrutiny. Questions have been asked. It has been criticized, but it seems that even the criticism of the common people of Haryana, of the women of Haryana and across the country has no bearing as far as this man and his double stand and his double standards on what he wants and how he is easily released are concerned. There is criticism coming from every quarter, but the government will very calmly come out and tell you that this is a legal procedure. A legal procedure. Let me also remind our viewers, in the last Haryana election, ladies and gentlemen, the jailer of the Sunaria prison, which Ram Rahim is housed in, from where, because the jailer also has to give his consent, from where he gets furlough after furlough, quit his job and fought on a BJP ticket and is now a member of the Legislative Assembly. And then they say, don't see politics in anything that is happening. This is just a legal procedure. I want to play out some reactions for you.
2: Well, I'm sure Mr. Hemanta Biswa Sarma is concerned about the dignity and safety of women across the country, which he should be. And I hope he will speak to his counterpart in Haryana and get the parole of Guru Ram Rahim cancelled. Because he should be concerned about women across the country.
3: कोई पहली बार तो हुआ नहीं ये काम होता आ रहा है तो किसी को ये तो आदरणीय न्यायालय ने देखना है और कैसे मेरे को तो इस बात की कोई आपत्ति नहीं किसी को देना नहीं देना क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे मन के भाव कुछ और हो सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश के अंदर क्या चल रहा है वो आप सब जानते हैं कि देश में क्योंकि कुछ चीजों के खिलाफ हम टिप्पा टिप्पणी संविधान के मुताबिक नहीं कर सकते लेकिन देश में क्या चल रहा है आप सबको पता है देश में क्या हो रहा है हर जगह पर वोट राजनीति हर चीज के लिए राजनीति
0: That's Punjab Congress chief, and it is said that this Dera chief, Gurmeet Ram Rahim, has influence in both Haryana and Punjab, and that is why he could not even get the right words to condemn this. And they don't want us to see politics into this. He, Ram Rahim, a convicted rapist, Ram Rahim, is enjoying a picnic. It's not a prison term. It's picnic for him. Rape and murder convict. He walks out of the jail once again for the 17th time, has been granted a 21-day furlough, 17th release since 2017 when the conviction happened. Out of 457 days in 8 years lodged at Haryana Sunaria prison, he has been out. In 8 years, he has spent 457 days outside prison. In 2017, he was sentenced to 20 years in prison for raping two of his disciples. He raped two Dera followers and the allegation is that he murdered another. This convicted rapist, ladies and gentlemen, comes out of the prison at will. And What I want to tell you at this moment, what is the message that the government of Haryana, we keep talking about women's safety and we are talking about at this moment, there is so much furore about what Rahul Gandhi said, minister after minister responding.

0: ढूंढा था जाके, जब किसी ने साथ नहीं दिया उस टाइम पे, तो सर हमने ढूंढा था जाके।
1: किसी भी पिता के लिए इससे बड़ा दुख की और कोई बात नहीं हो सकती, जिस तरीके से आपके बेटे के साथ हुआ, फिर आपको खुद उतरना पड़ा जब आप वहां।
0: हम खुद उतर गए थे, हमने तो वीडियो भी डाल रखी थी नाले में, उसमें हमें नहीं मिला, मगर हम जो थे वहां पे ढूंढ रहे थे, उससे थोड़ा सा आगे आज निकला, 20 मिनट में जेसीबी पहुंच गई, उसने 20 मिनट में वहां ढूंढ दिया। ये उसी शनिवार को ही हमें ऐसे ढूंढ देते तो हमारा बच्चा भाभी जी जिंदा मिलता, जिंदा मिल जाता। आज चौथे दिन मिला है हमारे लिए।
1: चौथे दिन मशीन लेकर आए ये लोग?
0: हाँ, आज चौथा दिन हो गया, शनिवार को गिरा था 11 बजे, आज 2 बजे मिला था।
1: मशीन लाने में 4 दिन लग गए, जब आप लगातार कहते रहे कि मशीन से ढूंढ दीजिए।
0: हाँ, मशीन इन्हें लाने में 2 दिन लग गए थे।
1: अवधेश जी,
2: मैं आपको थोड़ी तफ्तीश से बताऊं।
1: जी
2: सर, मेरा नाम बाबर खान है, मैं भीम आर्मी संगठन से हूँ। ये अवधेश भाई एक प्राइवेट सफाई कर्मचारी है, जो कि लोकल एरिया में सफाई का काम करने का काम करते हैं। सैटरडे को ये वाकया हुआ, सैटरडे को पुलिस प्रशासन ने बहुत बर्बरता अपनाई यहाँ पर, सही तैयार है, सही ढंग तरीके से ना गाइड किया ना बात की। इन लोगों ने ये बोला कि अगर आप गोताखोरों को नहीं उतार रहे, अगर आप रेस्क्यू टीम को नहीं उतार, तो हमें तो हम उतर हम अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे। मगर जिस जो बर्बरता अपनाई गई वो बहुत शर्मसार थी सर।
1: ठीक है अवधेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट सर, मैं अवधेश जी से एक मिनट ये समझना चाहता हूँ। अवधेश जी, सरकार ने एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है, आपको लगता है कि ये आपके बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, उसके लिए किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को?
0: सर हमारा तो ये कहना है, 3 मांगे थी हमारी इनसे। पहली मांग हमारी ये थी, हमारे बच्चे की बॉडी मिल जाए। दूसरी बात ये है कि ये नाले का कोई समाधान ऐसा हो जाए कि सर इसमें दोबारा कोई गलती ना हो, बच्चे गिर जाते हैं, मिलते नहीं। ये हमारा पहला बच्चा है जो हमने इतना वो करा, जो हमें मिल गया। और तीसरी बात ये सर, सरकार हमें क्या करना चाहती है हमारे साथ में, क्या नहीं करेगी, वो आप लोग जान।
1: आपको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला, कुछ मुआवजे की बात हुई?
0: नहीं, हमें अभी तक कोई बात नहीं हुई सर। हमारा 15 साल का बेटा था, साहब चला गया, क्या होता है
2: सर? कल यहाँ पर
1: एक मिनट रुक जाइए।
0: कल सर एसडीएम डीएम साहब आए, हमसे मिलके भी नहीं गए, कितना आप सोच की बात है।
1: अधिकारी वहां पर आए और आपसे मिले भी नहीं है?
2: नहीं,
0: हम दो आदमी
3: भी नहीं था कि
2: सर, हमें ये यकीन था कि एसडीएम साहब हमारे सामने आकर जांच देख कर गए हर चीज को, मगर परिवार की माँ और बाप मिथुन के फादर दोनों वहीं बैठे थे, उन्होंने जोखिम नहीं उठाया।
1: सर आप एक बारी अवधेश जी को बात करने देंगे प्लीज? अवधेश जी, मैं बस आपसे, क्योंकि आप बहुत मुश्किल है आपके लिए, आपने अपना बेटा खोया है, सरकार इस वक्त अगर देख रही है, मुख्यमंत्री अगर इस वक्त रेखा गुप्ता देख रही है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप?
0: अब रेखा गुप्ता से हम क्या कहें, कैसी अपनी प्रशासन कौन से हिसाब का रख रखा है यहाँ पर। 4 दिन में आज किसी रईस का कुत्ता गिर जाता तो उसी दिन ये ढूंढ के दे देते। आज एक गरीब का बच्चा गिर गया, खुद मुझे उतरना पड़ा, मुझे नहीं मिला है। इनने आज चौथे दिन मेरे बच्चे की इतनी वो करी, तब जाके मेरा बच्चा मिला है वो भी। अब क्या मैं बताऊं रेखा गुप्ता जी को, किस क्या बताऊं, गरीब आदमी हो। वो बॉडी मिल गई, वही हमें बहुत है बाबू जी।
1: आपको क्या बॉडी सुपुर्द कर दी गई है अवधेश जी? अभी
0: हॉस्पिटल से आ रहे हैं भाई, छोटे छोटे गए थे साथ में, मैं भागा पीछे, आगे बोले कि तुम पापा तुम साथ में उसमें बेटे को मेरे को गाड़ी के पीछे भगता ही रह गया साथ, वो चले गए, मेरे छोटे छोटे भाई बैठ गए तो वो चले गए थे साथ में, लेके आ रहे हैं।
1: अवधेश जी शब्द नहीं है ये बताने के लिए जो आप
0: घर ले जाना
1: जी,
0: बड़ा परेशान है बच्चे लेने के लिए। हाँ मेरे माँ बाप जो है बहुत परेशान है, वो 4 दिन से माँ को तो बताई नहीं, उसकी तबीयत बहुत खराब है, घर लेके जाना चाहता हूँ।
1: अवधेश जी, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस वक्त आपकी बात सुन रही होगी, मदद के लिए सामने आएगी और कोशिश यही रहेगी कि इस तरीके से जो आपके साथ हुआ वो किसी पिता के साथ ना हो, वो किसी भी बच्चे के साथ

0: आता हूँ, बहुत हमारी सांत्वना आपके साथ।
1: वो तो किसी रईस के ही साथ में हो ऐसा काम, गरीब बेचारा क्या कर सकता है सर, क्या करेगा, वो तो हाथ पाए पटकता है बैठ जाता है। तो हमारा तो हमने तो इतनी वो करी मेहनत, तो हमारा बच्चा मिल गया इसमें, जाने आए हमें 18 साल हो गई, यहाँ हर साल 2-4 बच्चे गिरी जाते हैं, लापता हो जाते हैं, मिलते ही नहीं बेचारे गरीब आदमियों के, इस नाले में, ये नाले इस करीना का है, नहीं मिल पाते, नहीं उड़ पाते, तो हमने ढूंढवा लिया
0: जी। अवधेश जी, हमारी सांत्वना आपके साथ, भगवान आपके बेटे की आत्मा को शांति दे, और आपको कम से कम उम्मीद यही रखेंगे कि सरकार की तरफ से मदद भी मिले, एंड दिस शुड सर्व एज अ लेसन फॉर द गवर्नमेंट, नो मोर मिथुन, यू कांट फेल द पीपल ऑफ दिस सिटी लाइक दिस। अ यंग बॉय ड्राउन इन दिस ड्रेन, हिज फादर हैड टू डेस्परेटली फाइंड जंप हिमसेल्फ टू फाइंड हिज बॉडी, and what he said, ladies and gentlemen, it's heartbreaking, it will stay at least in my head, as he said that because he's a poor man, nobody cared for 4 days, it took them 4 days to even get the machines to try and find the body. If it would have been somebody else's, a rich person's dog, as per him, they would have found it much faster. Avdesh ji, bahut bahut shukriya humse baat karne ke liye. I just want to leave it there for all of us to think. We are failing as a society, we are failing as civilized people, we are failing on every front, whether it's the government or the administration, to give the basic infrastructure. 15-year-old Mithun has to pay the price for all that we see on paper, but nothing that comes to on our city on the ground. Quick break, I'm coming back, stay tuned.

0: वाह
1: मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर
2: मसाला। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।

0: और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, large

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्यन मसाला।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल paid.
1: Really?
4: Your mobile recharge is done.
1: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to ₹300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: Good evening and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, when it really matters on a story, the buck stops here. And our top debate today is about the smash patriarchy call given by Congress leader and leader of opposition Rahul Gandhi, where questions are now being asked whether the call to smash patriarchy also comes with caveats. Is this selective smashing? We'll talk about that and whether this is only an attempt by the BJP to inject a communal angle. Also at 8:30, a former Congress insider, somebody who in fact led the Mahila Morcha while she was in the Congress, has a dare, a challenge, and a little bit of a reminder of their own history for Rahul Gandhi. Sushmita Dey will be joining me live at 8:30, but let's get you started with our top story. Smash patriarchy, break the cage, no one owns women. A rallying cry for women from the Congress. Excellent message, a great call to arms, 100% smash away. Ending oppressive practices or mindsets is a sentiment that surely no one can argue with. After all, for the Viksit Bharat dream to be realized, India's Adi Abadi, India's women need to be free, fearless and forging ahead. But all of India's women need to do that. Which is why today the debate triggered by Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj among women has moved from smashing patriarchy to selectivity. And yes, you're right. The call is to smash patriarchy. That's what he said. Not Hindu patriarchy. So why are leaders from the BJP, like Union Minister Kiran Rijiju and Chief Minister Himanta Biswa Sarma, looking at it through a communal lens because of one word, Manusmriti? In referencing a text belonging only to one religion to define what patriarchy is there an insinuation that only one religion practices patriarchy? The BJP's pushback invited ridicule from opposition parties across the board, from the Congress, RJD, to even the newly formed Cockroach Janata Party, who wondered whether this was the BJP's natural impulse when on the back foot, to counter allegations of sexism by dragging in religion.
1: Rahul Gandhi इस भूमि को समझ ही नहीं पाए हैं जो संस्कृति संस्कार वो लिए हैं इस धरती पर महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है उनको मनु स्मृति की किसी कहानी को किसी के द्वारा सुनी गई लेकिन अपने सनातन संस्कृति को उन्होंने देखा क्यों नहीं
2: जिस तरीके के नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के जो बयान हैं वो जो परिलक्षित करते हैं कि हमेशा उन्होंने सनातन संस्कृति के विरोध में ही बोलने का काम किया है और पता नहीं हिंदू दर्शन हिंदू धर्म से उनको क्यों इतनी चिढ़ है क्योंकि स्वयं तो अब वो किसी धर्म से जुड़े नहीं हैं तो इस कारण उनका इस तरीके का आचरण बिना पढ़े लिखे एक पुरानी ग्रामीण कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए आधा अधूरा ज्ञान लेकर के वो आलोचना करने का काम करते हैं
3: राहुल गांधी कंटिन्यूसली ब्लेमिंग द हिंदू सोसाइटी इन ऑब्जर्विंग द वेरियस सोशल कस्टम्स बट द इफ ही वांट टू स्मैश दिस पेट्रियार्की बट इफ ही डू सो Why he is not telling anything against the other religious customs and traditions?
4: Rahul Gandhi ko Hindu granthon mein burai hi dikhai deti hai. Kabhi sharia, triple talaq, halala ke upar unhone khul ke bola hai. Ye selective feminism hai. Vote bank ke liye Hindu ko gali.
5: Rahul ji ek reformer hai. Muslim samaj se bhi reformer nikale. To सिखों में से भी रिफॉर्मर्स होने चाहिए क्रिश्चियंस में रिफॉर्मर्स हुए तो सोसाइटी को रिफॉर्म कर रहे हैं तो अब वही आदमी अपनी सोसाइटी के बारे में ज्यादा बोल सकता है जिस सोसाइटी को बिलोंग करता है और इसलिए जो किरण रिजिजू जी का आरोप प्रत्यारोप है गलत है बीजेपी का है जो गलत है
6: That's all false and fabricated version of questionnaire by the Kiran Rijiju. Why? Because Congress party is a party of secular endeavor. So apart from that, Congress party is filled with more than 75% to 80% Hindus only. And other communities are also there in the Congress party. So Congress party believes in secularism and Congress party believes in the endeavor of the secularism.
7: ये सब चीजें इस देश में नहीं चलेंगी। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। मेरे राज्य के एक मंत्री जी यही काम ही करते हैं फुल टाइम। और मैं तो डिमांड करता हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर पोर्टफोलियो रीशफल में उनका विभाग बदले, उनके साथ कंपटीशन में हिमंतो जी, पेट्रियार्की की बात करना, क्या यह गलत है इस देश में? क्या विमेन के एजेंसीज की बात ना हो?
8: किरण रिजिजू जी ने इसको एक पॉलिटिकल और रिलीजियस समस्या बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इसमें ऐसा मेजोरिटी माइनॉरिटी फर्क कुछ नहीं है। पेट्रियार्की एक बुरा चीज है, एक बुरा समस्या है, इसको हटाना जरूरी है। कौन करेगा? सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी और एक मिनिस्टर और किसी नहीं कर सकता। हर जगह में है, हर राज्यों में है, हर समाज में है।
0: Which brings us to the question, is the Congress's anti-patriarchy goonj selective and politically targeted, or is this the BJP's attempt to inject a communal angle to a simple feminist effort? Joining us on the debate, we have Radhika Khera from the BJP, Zeba Zuaria, advocate, is back on great public demand, because Zeba, you've clearly struck a chord over there. We've got Sanjay Jha, political analyst, joining us with Ghanshyam Tiwari of the Samajwadi Party. But Radhika Khera, to you first, because the most commonsensical argument I've heard from most people in the Congress is, why is this creating so much heartburn for the BJP? All Rahul Gandhi said was smash patriarchy. He never said smash Hindu patriarchy or smash the BJP's patriarchy or smash, I don't know, saffronism's patriarchy. He just said smash patriarchy. It includes everything.
9: Vande Mataram to everyone. Padmaja, patriarchy simply means a social system that gives power and control to men rather than women. Now, patriarchy is not only there in the Manusmriti, it is there in

0: viendo
1: estanecer.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली
5: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
5: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to ₹300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है।
6: कुछ इससे भी अनोखा
5: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: Cuando está
1: देश का टायर जेके टायर
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली
5: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
5: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea.

0: कंट्री।
1: कोई पहली बार तो हुआ नहीं ये काम, होता आ रहा है तो किसी को ये तो आदरणीय न्यायालय ने देखना है। और कैसे मेरे को तो इस बात की कोई आपत्ति नहीं किसी को देना नहीं देना, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे मन के भाव कुछ और हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश के अंदर क्या चल रहा है वो आप सब जानते हैं। सब जानते हैं कि देश में क्योंकि कुछ चीजों के खिलाफ हम टिप्पा टिप्पणी संविधान के मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन देश में क्या चल रहा है आप सबको पता है। देश में क्या हो रहा है, हर जगह पर वोट राजनीति, हर चीज के लिए राजनीति।
2: फेथ और यूनिफॉर्म, व्हाट वुड यू चूज? एंड दिस इज अ डिबेट दैट हैज बीन रीइग्नाइटेड येट अगेन। This is after the Allahabad High Court has dismissed a petition seeking permission for a student to wear a headscarf along with the prescribed school uniform. The two-judge bench observed that the headscarf was not being worn by other students in the school, including girls from the same religious community. The court noted that except for the petitioner, no other girl was seen wearing a headscarf in the photographs placed before it. The ruling has now triggered a political debate. The BJP has backed the court's decision, questioning the need to wear religious attire in schools. The Samajwadi Party, however, has questioned the objection to wearing a hijab with a school uniform while saying it will abide by the court's decision.
3: देखिए, धर्म पे हमला नहीं है। शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए विद्यालय में अगर एक रूपता रहती है तो ये समझ में आता है कि ये छात्र हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इस्लाम का पहनावा अलग, हिंदू का पहनावा अलग हो तो देखने में लगता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान होता है। तो जो टिप्पणी कोर्ट ने किया वो सही किया।
4: Certainly it seems to be following the reasoning. I've not seen the judgment of the Allahabad High Court, but essentially a secular school would have a, which is not running on religion, would have a uniform, and the focus is going to be on the academic curriculum and the secular curriculum, which has nothing to do with religion per se. Minorities, irrespective which are the minorities, whether it is Christians or Muslims or anyone else, is Sikhs, all our brothers sisters who are minorities, they are protected to have their own educational institutions under Article 26 of the Constitution. And hence, if a child or a family believes that an essential, what they consider is important for the child to be in a certain religious manner, then they can certainly study in those religious institutions which is constitutionally provided for and available. And there are schools which are run by very prominent Muslim charitable organizations. However, to argue and say that wearing a hijab is an essential practice, that I think may not be the correct position given the line of judgments by the Honorable Supreme Court.
5: यह मुद्दा क्यों उठता है? घूंघट पे सवाल, मैं हिजाब को घूंघट में बदल देना चाहता हूँ। इस देश की में परंपरा से घूंघट काटती हैं बच्चियां, महिलाएं, बहुएं, बहिनें, रिवाज है। तो यह रिवाज है और कोई अपना अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इसमें रोक नहीं होना चाहिए। उसकी इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है।
0: इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है, सही बात है। शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना, इसीलिए एकदम सही फैसला है। और जो भी कोर्ट का न्यायालय का फैसला होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मानेगी, लागू करेगी, लेकिन फैसला एकदम सही है।
6: अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं। अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा, तो ये सब पे लागू कीजिए ना। या कोई सिख बच्चा जो है वो पगड़ी नहीं बांधेगा, या कोई सिख बच्चा कटार नहीं रखेगा। मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय को सभी को सर्वसंभाव के साथ बात करनी चाहिए। सिर्फ राज्य सरकारों को खुश करने के लिए अगर कोई चीजें हो रही है तो हम उसका विरोध करेंगे।
2: The Nashik Kumbh Mela spending has now triggered a debate over the government's priorities after a Supreme Court judge questioned the allocation of thousands of crores for the event. Justice Prasanna B. has pointed out that the government is planning to spend around 32,000 to 34,000 crore rupees on Kumbh, while highlighting the closure of Marathi medium schools in Maharashtra. The remarks have now been welcomed by the opposition. The opposition leaders have said that the Maharashtra state continues to face serious problems in education, including lack of teachers, school buildings, toilets, drinking water, and even proper access to roads. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition and said that the Congress leaders are anti-Sanatanis and that they are not liking Kumbh in Nashik.
7: खूप सकाळी निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी देऊ, कुंभमेळ्यासाठी 32,000, उपमुख्यमंत्री म्हणाले, 34,000 कोटी देऊ. नंतर कुठेतरी बातमी वाचली की एका कॉरिडॉरसाठी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करू. एवढे 1,000 कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं, त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही. पण जर ह्या 1,000 कोटीच्या रकमेचे जर साधन तरतूद करत असेल, तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले, तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा, मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या, त्या बंद पडल्या.
8: राज्य में बहुत सारे समस्या है, प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या है. बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचा भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है. हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चे के, इतने पैसे की, इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है, तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था. हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया. वो कुंभ मेला करो आप, पर 35,000 करोड़ रुपये क्यों खर्चा करते हो, यह हमारा कहना था. सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, जज ने, श्री प्रसन्ना जी वराडे जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है, और 3,000 रुपए खर्चा कर शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है.
9: सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का, उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती. उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूल है उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर, तो वो भी बच जाती. तो इतने बड़े न्यायाधीश ने कहा, अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है.
10: महाराष्ट्र की भूमि पर देवाभव के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर हम खर्च कर सकें. पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे. वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं. सारे कांग्रेस नेता कान खोल करके ध्यान से सुने, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर महाकुंभ होगा, और यदि इसे कोई विरोध करता है तो आने वाले चुनाव में जनेऊ पहनने का कांग्रेस का नाटक, या हिंदू मंदिरों में जाने की नौटंकी सनातन हिंदू भाई नहीं सहन करेगा.
2: एंड नाउ ऑन टू द इश्यू ऑफ फूड सेफ्टी. Two worm-related food safety incidents involving Paul Bakery have surfaced in 2 days. First one was in Gurugram and then in Pune. In Gurugram, a dinner reportedly discovered a live worm crawling through a sandwich after eating almost half of it. A video of the incident went viral and the restaurant has since apologized. Now in Pune, a customer has alleged finding a worm in takeaway food purchased from Paul Bakery at Phoenix Market City in Viman Nagar on August of 24th. A customer posted the video online, raising questions over the food hygiene and quality. The bakery administration is yet to issue an official response regarding the same. And meanwhile, while all of this is happening, a shocking scramble for chocolates in Kanpur had surfaced. But these were not chocolates being distributed. They were allegedly expired products dumped as garbage. A viral video from the Panki industrial area show people rushing to collect the boxes of chocolates and toffees, filling bags and sacks with them. The person who shot the video

0: petition seeking permission for a student to wear a headscarf along with the prescribed school uniform. The two-judge bench observed that the headscarf was not being worn by other students in the school, including girls from the same religious community. The court noted that except for the petitioner, no other girl was seen wearing a headscarf in the photographs placed before it. The ruling has now triggered a political debate. The BJP has backed the court's decision, questioning the need to wear religious attire in schools. The Samajwadi Party, however, has questioned the objection to wearing a hijab with a school uniform while saying it will abide by the court's decision.
1: देखिए धर्म पे हमला नहीं है. शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए विद्यालय में अगर एक रूपता रहती है तो ये समझ में आता है कि ये छात्र हैं. यहाँ कोई भेदभाव नहीं है. लेकिन इस्लाम का पहनावा अलग, हिंदू का पहनावा अलग हो तो देखने में लगता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान होता है. तो जो टिप्पणी कोर्ट ने किया वो सही किया.
2: Certainly it seems to be following the reasoning. I have not seen the judgment of the Allahabad High Court. But essentially, a secular school would have a, which is not running on religion, would have a uniform, and the focus is going to be on the academic curriculum and the secular curriculum, which has nothing to do with religion per se. Minorities, irrespective which are the minorities, whether it is Christians or Muslims or anyone else, is Sikhs, all our brothers and sisters who are minorities, they are protected to have their own educational institutions under Article 26 of the Constitution. And hence, if a child or a family believes that an essential, what they consider is important for the child to be in a certain religious manner, then they can certainly study in those religious institutions which is constitutionally provided for and available. And there are schools which are run by very prominent Muslim charitable organizations. However, to argue and say that wearing a hijab is an essential practice, that I think may not be the correct position given the line of judgments by the Honorable Supreme Court.
3: यह मुद्दा क्यों उठता है? घूंघट पे सवाल. मैं हिजाब को घूंघट में बदल देना चाहता हूँ. इस देश की में परंपरा से घूंघट काटती हैं बच्चियां, महिलाएं, बहुएं, बहिनें. रिवाज है तो यह रिवाज है और कोई अपना अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इस पे रोक नहीं होना चाहिए. उसकी इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है.
4: इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है, सही बात है. शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना, इसीलिए एकदम सही फैसला है. और जो भी कोर्ट का न्यायालय का फैसला होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मानेगी, लागू करेगी. लेकिन फैसला एकदम सही है.
5: अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं. अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्ब्लम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा, तो ये सब पे लागू कीजिए ना. या कोई सिख बच्चा जो है वो पगड़ी नहीं बांधेगा, या कोई सिख बच्चा कटार नहीं रखेगा. मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय को सभी को सर्वसंभाव के साथ बात करनी चाहिए. सिर्फ राज्य सरकारों को खुश करने के लिए अगर कोई चीजें हो रही है तो हम उसका विरोध करेंगे.
0: The Nashik Kumbh Mela spending has now triggered a debate over the government's priorities after a Supreme Court judge questioned the allocation of thousands of crores for the event. Justice Prasanna B has pointed out that the government is planning to spend around 32 to 34,000 crore rupees on Kumbh while highlighting the closure of Marathi medium schools in Maharashtra. The remarks have now been welcomed by the opposition. The opposition leaders have said that the Maharashtra state continues to face serious problems in education, including lack of teachers, school buildings, toilets, drinking water and even proper access to roads. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition and said that the Congress leaders are anti-Sanatanis and that they are not liking Kumbh in Nashik.
6: खूप सकाळी निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी देऊ. कुंभमेळ्यासाठी 32,000, उपमुख्यमंत्री म्हणाले, 34,000 कोटी देऊ. नंतर कुठेतरी बातमी वाचली की एका कॉरिडॉरसाठी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करू. एवढे हजार कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करत त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही. पण जर ह्या हजारो कोटीच्या रकमेची जर साधन तरतूद करत असेल तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या त्या बंद पडल्या.
7: राज्य में बहुत सारे समस्या है, प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या है, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचा भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है. हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चा के इतनी पैसे की इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था. हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया, वो कुंभ मेला करो आप पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करते हो ये हमारा कहना था. सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जज ने श्री प्रसन्ना जी वराड़े जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए खर्चा शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है.
8: सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती. उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूल है उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर तो वो भी बच जाती. तो इतने बड़े न्यायाधीश ने कहा अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है.
9: महाराष्ट्र की भूमि पर देवाभव के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे हम खर्च कर सकें. पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पे सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे, वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं. सारे कांग्रेस नेता कान खोल करके ध्यान से सुने, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर महाकुंभ होगा और यदि इसे कोई विरोध करता है तो आने वाले चुनाव में जनेऊ पहनने का कांग्रेस का नाटक या हिंदू मंदिरों में जाने की नौटंकी सनातन हिंदू भाई नहीं सहन करेगा.
0: एंड नाउ ऑन टू द इश्यू ऑफ फूड सेफ्टी. Two bomb related food and safety incidents involving Paul Bakery have surfaced in 2 days. First one was in Gurugram and then in Pune. In Gurugram, a diner reportedly discovered a live worm crawling through a sandwich after eating almost half of it. A video of the incident went viral and the restaurant has since apologized. Now in Pune, a customer has alleged finding a worm in takeaway food purchased from Paul Bakery at Phoenix Market City in Viman Nagar on August of 24th. A customer posted the video online, raising questions over the food hygiene and quality. The bakery administration is yet to issue an official response regarding the same. And meanwhile, while all of this is happening, a shocking scramble for chocolates in Kanpur had surfaced. But these were not chocolates being distributed. They were allegedly expired products dumped as garbage. A viral video from the Panki industrial area show people rushing to collect the boxes of chocolates and toffees, filling bags and sacks with them. The person who shot the video claims the products had been discarded by a factory owner after being declared unfit for scale. He later checked the packaging and found that some chocolates had reportedly expired as far as back in 2024. With that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue.
10: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही. पण जर ह्या हजारो कोटीच्या रकमेत जर साधन तरतूद करत असेल तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या त्या बंद पडल्या.
1: राज्य में बहुत सारे समस्या है, प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या है, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचालय भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है. हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चे के इतने पैसे की इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था. हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया, वो कुंभ मेला करो आप पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करते हो ये हमारा कहना था. सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जज ने श्री प्रसन्ना जी वराड़े जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए खर्चा शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है.
2: सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का, उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती. उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूल है उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर, तो वो भी बच जाती. तो इतने बड़े न्यायाधीश ने कहा, अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है.
3: महाराज की भूमि पर देवा भव के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर हम खर्च कर सकें. पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे, वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं. सारे कांग्रेस नेता कान खोल करके ध्यान से सुने, महाराज की पवित्र भूमि पर महाकुंभ होगा और यदि इसे कोई विरोध करता है तो आने वाले चुनाव में जनेऊ पहनने का कांग्रेस का नाटक या हिंदू मंदिरों में जाने की नौटंकी सनातन हिंदू भाई नहीं सहन करेगा.
4: एंड नाउ ऑन टू द इश्यू ऑफ फूड सेफ्टी. Two warm related food and safety incidents involving Paul Bakery have surfaced in 2 days. First one was in Gurugram and then in Pune. In Gurugram, a dinner reportedly discovered a live worm crawling through a sandwich after eating almost half of it. A video of the incident went viral and the restaurant has since apologized. Now in Pune, a customer has alleged finding a worm in takeaway food purchased from Paul Bakery at Phoenix Market City in Viman Nagar on August of 24th. A customer posted the video online, raising questions over the food hygiene and quality. The bakery administration is yet to issue an official response regarding the same. And meanwhile, while all of this is happening, a shocking scramble for chocolates in Kanpur had surfaced. But these were not chocolates being distributed. They were allegedly expired products dumped as garbage. A viral video from the Panki industrial area show people rushing to collect the boxes of chocolates and toffees, filling bags and sacks with them. The person who shot the video claims the products had been discarded by a factory owner after being declared unfit for scale. He later checked the packaging and found that some chocolates had reportedly expired as far as back in 2024. With that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue.

0: academic curriculum and the secular curriculum, which has nothing to do with religion per se. Minorities, irrespective which are the minorities, whether it is Christians or Muslims or anyone else, is Sikhs, all our brothers and sisters who are minorities, they are protected to have their own educational institutions under Article 26 of the Constitution. And hence, if a child or a family believes that an essential, what they consider is important for the child to be in a certain religious manner, then they can certainly study in those religious institutions which is constitutionally provided for and available. And there are schools which are run by very prominent Muslim charitable organizations. However, to argue and say that wearing a hijab is an essential practice, that I think may not be the correct position given the line of judgments by the Honorable Supreme Court.
1: यह मुद्दा क्यों उठता है? घूंघट पे सवाल, मैं हिजाब को घूंघट में बदल देना चाहता हूं। इस देश की में परंपरा से घूंघट काटती हैं बच्चियां, महिलाएं, बहुएं, बहिनें, रिवाज है, तो यह रिवाज है और कोई अपना अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इसमें रोक नहीं होना चाहिए, उसकी इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है।
2: इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है, सही बात है, शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना, इसीलिए एकदम सही फैसला है। और जो भी कोर्ट का न्यायालय का फैसला होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मानेगी, लागू करेगी, लेकिन फैसला एकदम सही है।
3: अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं, अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा, तो ये सब पे लागू कीजिए ना। या कोई सिख बच्चा जो है वो पगड़ी नहीं बांधेगा, या कोई सिख बच्चा कटार नहीं रखेगा। मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय को सभी को सर्वसंभाव के साथ बात करनी चाहिए। सिर्फ राज्य सरकारों को खुश करने के लिए अगर कोई चीजें हो रही है तो हम उसका विरोध करेंगे।
4: The Nashik Kumbh Mela spending has now triggered a debate over the government's priorities after a Supreme Court judge questioned the allocation of thousands of crores for the event. Justice Prasanna B has pointed out that the government is planning to spend around 32,000 to 34,000 crore rupees on Kumbh while highlighting the closure of Marathi medium schools in Maharashtra. The remarks have now been welcomed by the opposition. The opposition leaders have said that the Maharashtra state continues to face serious problems in education, including lack of teachers, school buildings, toilets, drinking water, and even proper access to roads. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition and said that the Congress leaders are anti-Sanatanis and that they are not liking Kumbh in Nashik.
5: खूप सकाळी निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी देऊ, कुंभमेळ्यासाठी 32,000, उपमुख्यमंत्री म्हणाले 34,000 कोटी देऊ, नंतर कुठेतरी बातमी वाचली की एका कॉरिडॉरसाठी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करू, एवढे 1,000 कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही, पण जर ह्या 1,000 कोटीच्या रकमेत जे साधन तरतूद करत असेल तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा, मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या त्या बंद पडल्या।
6: राज्य में बहुत सारे समस्या है, प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या है, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचा भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है। हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चे के इतने पैसे की इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है, तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था। हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया, वो कुंभ मेला करो, आप पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करते हो, ये हमारा कहना था। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, जज ने, श्री प्रसन्ना जी वराड़े जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए खर्चा शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है।
7: सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का, उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती। उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूल है उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर, तो वो भी बच जाती। तो इतने बड़े न्यायाधीश ने कहा, अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है।
8: महाराष्ट्र की भूमि पर देवाभव के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर हम खर्च कर सकें। पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे, वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं। सारे कांग्रेस नेता कान खोल करके ध्यान से सुने, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर महाकुंभ होगा और यदि इसे कोई विरोध करता है तो आने वाले चुनाव में जनेऊ पहनने का कांग्रेस का नाटक या हिंदू मंदिरों में जाने की नौटंकी सनातन हिंदू भाई नहीं सहन करेगा।
4: एंड नाउ ऑन टू द इश्यू ऑफ फूड सेफ्टी। Two worm related food and safety incidents involving Paul Bakery have surfaced in 2 days. First one was in Gurugram and then in Pune. In Gurugram, a dinner reportedly discovered a live worm crawling through a sandwich after eating almost half of it. A video of the incident went viral and the restaurant has since apologized. Now in Pune, a customer has alleged finding a worm in takeaway food purchased from Paul Bakery at Phoenix Market City in Viman Nagar on August of 24th. A customer posted the video online, raising questions over the food hygiene and quality. The bakery administration is yet to issue an official response regarding the same. And meanwhile, while all of this is happening, a shocking scramble for chocolates in Kanpur had surfaced. But these were not chocolates being distributed. They were allegedly expired products dumped as garbage. A viral video from the Panki industrial area show people rushing to collect the boxes of chocolates and toffees, filling bags and sacks with them. The person who shot the video claims the products had been discarded by a factory owner after being declared unfit for scale. He later checked the packaging and found that some chocolates had reportedly expired as far as back in 2024. With that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue.
9: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
10: Food is music. Synchrony of so many elements. I am a conductor of chaos. Chef Gagar Anand at NDTV, Walk the Talk.
9: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.